उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर शारदा सवेरा, मैं हूं गगन आपके साथ।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: रमेश।
1: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूँ गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ गगन आपके साथ, वो गगन हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें होती हैं। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें करते हैं, जिंदगी को जीने की बातें करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने जिस तरीके से बातें की तो जाहिर सी बात है कि आप समझ ही गए कि जीने की हम बात कर रहे हैं। और जल को पीने की जब बात होती है तो शुद्धता की बात होती है, और शुद्धता की जब बात होती है तो एक ब्रांड की बात होती है। वो ब्रांड कौन सा है उसके बारे में जानेंगे जरूर। लेकिन आज मेरे स्टूडियो में खुद चलकर एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप पाते हैं। और जो पीछे अनुभव है मैं देख पा रहा हूं कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग में आप रहे हैं आयोटा वाटर, प्रेजेंट टाइम में आप हैं, और ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर बीएन ग्रुप में आप जुड़े रहे हैं, हेड ऑफ मार्केटिंग वेंकटेश नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में आप रहे हैं नोएडा में, और कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर पतंजलि में आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, और एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसका नाम है बिस्लरी से भी आप जुड़े रहे। आप हैं मेरे साथ मिस्टर अजीत कुमार सिंह। तो सिंह साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, मैं अजीत कुमार सिंह।
0: सर, कहीं कुछ परिचय में कमी रह गई है तो आप मुझे बता सकते हैं। कैसे आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: और जो आपका एक ब्रांड है आयोटा वाटर, जिसमें आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
1: जी जी जी,
0: तो इसके बारे में सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये थॉट कैसे आया और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। ऑफलाइन आपने मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया, तो थोड़ी थोड़ी हम बातों को शुरू करेंगे।
1: जी जी बिल्कुल। आयोटा वाटर एक ब्रांड नहीं, एक सोच है, एक समाज को ध्यान में रख
0: के मार्केटिंग मैनेजर है। और यही चीजें होती है, यही चीजें इंसान को आगे लेकर जाती हैं। ग्रेट
1: जी, एक अपने आप में एक सोच है, एक सोच के तहत हमने एक विज्ञान का जो विषय है उसको हमने अपनाया है इस पानी के अंदर। मार्केट में पानी विगत 20-25 सालों से जो पैकेज ड्रिंक वाटर का मार्केट चल रहा है उसमें हमने एक इनोवेशन का सोचा जो एक जन कल्याण का भी माध्यम बने पानी के साथ साथ, जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारी बाकी चीजें हमारे लिए बाय प्रोडक्ट्स है। हमारा इंटेंशन ये है, हमारा उद्देश्य लक्ष्य ये है कि लास्ट माइल तक हमारा पानी पहुंचे, गांव-गांव में घर घर तक हमारे पानी पहुंचे। आज शुद्ध पानी अपने आप में एक विषय है, और पानी का सीधा संबंध आपका
0: हेल्थ से
1: है, स्वास्थ्य से है। और वहां पे सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब हमें शुद्ध पानी नहीं मिलता, वाटर कंटेनमेंट के इश्यूज होते हैं। आज बड़े बड़े सोसाइटियों में भी वाटर कंटेनमेंट इश्यूज होते हैं, आए दिन अखबारों के अंदर भी आप पढ़ते रहे होंगे। तो उस चीजों को समाधान करने के लिए तो हमने आयोटा वाटर लेकर आया, जिसमें एक विज्ञान का भी योगदान है, जिस योगदान का नाम है नैनो बबल टेक्नोलॉजी।
0: परफेक्ट, ये जो बात है दोस्तों, इस संबंध में हम जरूर जानेंगे एक सोच के बारे में, और जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी का आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं ये क्या है, ये सोच कहाँ से डेवलप हुई, दो बातें, इन बातों को हम जरूर आगे लेकर जाएंगे। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बहुत ही खूबसूरत गाना। और इस गाने को सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। और ये लाइनें जो कहती हैं कि जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। हमने ये भी सुना है कि पानी पर भविष्य में युद्ध होगा। युद्ध आज हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध। हम युद्ध अक्सर अपनी गली मोहल्ले में देखते हैं कि पानी की कमी है जिसकी वजह से लोगों में झगड़े हो जाते हैं। अब बात आती है शुद्धता की। जब शुद्धता का जिक्र हो रहा है तो जिक्र इस समय स्टूडियो में हो रहा है अजीत कुमार सिंह जी, जो कि आयोटा वाटर से जुड़े हुए हैं। जिक्र कर रहे हैं एक सोच का, जिक्र कर रहे हैं एक शुद्धता का। तो सर ब्रेक के इस पार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: सर सोच के बारे में मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ जो आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। ये जो नई टेक्नोलॉजी है नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ये क्या है, किस सोच के साथ आप डेवलप हो रहे हैं, किस सोच के साथ आप मार्केट में उतर रहे हैं, ये सोच कहाँ से आई?
1: हमने इस तकनीक में ये रखा है कि पानी का हर बूंद ताकतवर बने
0: जी।
1: उस बूंद को ताकतवर बनाने के लिए हमने नैनो बबल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो आपके शरीर में एडवांस हाइड्रेशन को देता है, आपके एक नेक्स्ट लेवल जनरेशन को जो हाइड्रेशन की जरूरत है, जो एनर्जी की लेवल की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं 60% आपका शरीर पानी से बना हुआ है, उस पानी की आपूर्ति के लिए ये बहुत ही उत्तम समाधान है आपके आज के दौर में। और हमने ये तकरीबन 2023 ये सोच स्टार्ट हुई, 2025 में हमने इसको बाजार में उतारा है। और अभी हम दिल्ली NCR में इस चीज को सर्व कर रहे हैं, चंडीगढ़ ट्राइसिटी वगैरह में सर्व कर रहे हैं, ईस्टर्न UP और वेस्टर्न UP में सर्व कर रहे हैं, ताकि हमारे लास्ट माइल तक जाए ये हमारा पानी। और ये तकनीक ऐसा तकनीक है जो हमारे जो त्वचा पे छिद्र है उससे भी 200 times छोटा होता है ये तकनीक। इसके एक बूंद के अंदर अनगिनत जो है बबल्स, जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी का ताकत है, वो एक बूंद के अंदर मौजूद है, जो आपको ताकतवर बनाता है। आप अगर इसको एक महीने तक यूज करेंगे तो आपको अपने शरीर के अंदर अंतर मालूम पड़ेगा कि क्या ये टेक्निक है, कैसा है, क्या है आयोटा वाटर। तो ये टेक्नोलॉजी एक हमारे तरह से एक समझिए कि एक बहुत बड़ा पानी के अंदर आंदोलन है अपने आप में। और ये एक पैटेंट टेक्नोलॉजी है भारत का, जिसका पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसके भारत के माध्यम से विश्व को सर्व करने वाले हैं। वी सपोज टू सर्व द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब। सो दिस इज अवर द इनोवेशन। आयोटा इज ऑल अबाउट इनोवेशन। नाम भी वैसे ही रखा, आई स्टैंड फॉर द इनोवेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर ऑल।
0: माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप तो मन की बातों को पढ़ लेते हैं, आपने मेरी मन की बात छीन ली मुझसे। और यही मैं जानना चाह रहा था, मेरे श्रोता जानना चाह रहे थे कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत लकी है आयोटा टीम, क्योंकि आप जैसे दिग्गज उनके पास है।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: चलिए सिलसिला जो बातों का वो लगातार जारी है, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडियो में, जल की बातें हो रही हैं। निश्चित तौर पर जल है तो कल है, क्योंकि अगर शुद्ध पानी आप पियेंगे तो कल को आप देख पाएंगे। और शुद्धता का जब जिक्र हो रहा है तो जिक्र हो रहा है स्टूडियो में आयोटा वाटर का। ये तो विज्ञापन हो गया सर, क्या बात है। चलिए हम भी कम नहीं है। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें मेरे यानी गगन के साथ। जो विषय है वो विषय है जल। जल के बारे में बातें हो रही है और एक ब्रांड उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है आयोटा वाटर। जल का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है शुद्धता का। अगर आप शुद्ध पानी पी रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने शरीर का ख्याल रख पा रहे हैं। शुद्धता नहीं है तो निश्चित तौर पर सच बात तो यह है कि दिक्कतें परेशानियां आज नहीं तो कल आपके सामने आएंगी ही आएंगी। एक एक्सपर्ट के तौर पर एक नुमाइंदगी कर रहे हैं आयोटा वाटर की, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में है अजीत कुमार सिंह जी। तो अजीत जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: एक सोच के साथ जब इंसान बढ़ता है, आगे चलता है, हम जानते हैं चैलेंजेस जिनको हम कहते हैं कि चुनौतियां आती हैं
1: जी,
0: तो जाहिर सी बात है कि वो चुनौतियां आई होंगी, कुछ चुनौतियां आज हैं और उन चुनौतियों को पार करके मैं समझ पा रहा हूं कि कई सारे आउटलेट आज आपकी दिल्ली एनसीआर में है और उस सोच के साथ आप आगे भी बढ़ेंगे
1: जी।
0: तो उस स्ट्रेटजी के बारे में बताइए प्लीज।
1: देखिए, प्रतिस्पर्धा तो काफी स्वाभाविक होता है किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, कोई उत्पाद जो होता है तो उसको वो साकार करने के लिए हमारे जैसे जो विशेषज्ञ होते हैं वो एक प्लानिंग हम बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं बाजार के लिए। तो हमारे पास जो आज के टाइम में जो हमारी टीम है वो, ये कोई मुझे कहने में संकोच नहीं कि भारत की सबसे अच्छी टीम है हमारे पास, जो हमारे सारे सेल्स की टीम है, हमारे पास जो एक्सपर्टीज है, जो हमारे ऑपरेशन टीम है, जो हमने प्लांट ऑपरेशन जो कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे उच्च कोटि के सारे स्तर हैं। तो हमने स्टैंडर्ड का काफी ध्यान रखा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड हो वो विश्व स्तरीय हो, और हमारे प्रतिस्पर्धा इसलिए हमारा ज्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि हम एक यूनिक प्रोडक्ट हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है आयोटा वाटर की। ये हमारे जो फाउंडर्स हैं मिस्टर अनंत कपूर और हमारे जो एमडी हैं मिस्टर अमित कपूर, तो ये हमारा पेटेंट है। आगे आने वाले वर्षों में हम पूरे भारत के अंदर को सर्व करने वाले हैं, उसके बाद हमारा प्लान जो है विश्व स्तरीय पर जाने का है। तो ये जो है हम चाह रहे हैं कि पूरा जो दुनिया है इसका संपूर्ण लाभ ले और इस विज्ञान का फायदा उठाए, इस विज्ञान को अपने जीवन में तर्कसंगत करें। और जिस तरह से हमारा आने वाला वक्त जो समय जो है हमारे पास बहुत कम बचता है, जब हम काम करते हैं 24 घंटे जब हम काम करते हैं हमारे पास थकान होता है, आज जो स्ट्रेस लेवल हाई है जिस तरह से लोगों का जनमानस का, और एक थका देने वाली जिंदगी है, तो उसमें एक आयोटा वाटर एक बहुत अच्छा आपके लिए समाधान बन सकता है, जो आपको एक ताकत देगा, जो आपको डिटॉक्स करेगा, जो आपको हाइड्रेट करेगा, जो आपको नेक्स्ट लेवल हाइड्रेशन पर ले जाएगा, तो आप तुरंत जो है अपने आपको रिजुवेनेट महसूस कर सकते हैं।
0: वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और एक एक्सपर्ट के तौर पर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ नुमाइंदगी कर रहे हैं आयोटा वाटर की। अजय, कितनी अच्छी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तुम, मजा आ गया। मतलब आप अजीत साहब हमारे एक बहादुर के बारे में बोल दो कि मिलके खुशी हुई, बड़ा अच्छा है गगन के साथ रहता है ये बहादुर। कैसा लग रहा है आपको मिलके मुझे?
1: बहुत मजा आ रहा है।
0: अरे बहुत मजा आ रहा है और भी मजा आएगा। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे स्पोर्ट्स में भी ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और दिल्ली के अंदर सरकार के साथ भी इन्होंने हैंडशेक किया, डिटेल में जानेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से पुनः आप सबका इस्तकबाल में हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गर्मी जब पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि गर्मी में हम सब पानी की ओर भागते हैं। शुद्धता का आप लोग ख्याल रखें, पानी भरपूर पीजिए, पानी नहीं पीते तो तमाम दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। जब आप खेलते हैं भागदौड़ करते हैं तो उस समय भी पानी की आवश्यकता होती है। आपसे अजीत जी, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजीत कुमार सिंह जी जो कि आयोटा वाटर से हैं और बहुत सारी डिटेल में हमें बातें बता रहे हैं। तो सर, स्पोर्ट्स सेक्टर में जो क्वालिटीज हैं आपके आयोटा वाटर की, जब मेरी आपसे ऑफ एयर सिटिंग हो रही थी तो आप बहुत सारी क्वालिटीज गिना रहे थे, कुछ अगर दो चार क्वालिटीज उसके बारे में आप हमें बताएं, एक बात। दूसरी बात, आपका जो प्रयास है वो रंग ला रहा है। हमारी यमुना हम देख रहे हैं कि साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। भारत में वर्तमान समय में जो सरकार है वो भी प्रयासरत है और वो बातें भी आप हमें बता रहे थे कि इस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आपकी कंपनी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप एक करार के साथ, सरकार के साथ मिलकर आप आगे बढ़े। दो बातें क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट किया जो हमारी पेरेंट कंपनी है निको बबल्स, उसके थ्रू हम B2B करते हैं, जिसमें हम कई सारी सरकारी परियोजनाओं में, जो कई सारे जो सरकार गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है उसमें हम काफी काम करते हैं उस चीजों को लेके। तो उसमें भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें प्रोजेक्ट सरकार दे रही है, भारत सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा जो भी हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया जाएगा समाज कल्याण हेतु, उस पर हम कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। तो ये हमारा हमेशा रहेगा। आयोटा वाटर एक बॉटल पैक हमने बनाया, उस विज्ञान को हमने बॉटल में लाने के लिए सोचा, ताकि हर चीज जो है एक व्यक्ति को मिल सके, उसका फायदा व्यक्ति को मिल सके, उसका इस्तेमाल कर सके। ये औद्योगिक क्षेत्र तक पहले निहित था, जिसको हम अब आगे जाके एक व्यापार और बाजार के थ्रू एक लास्ट माइल ग्राहक होते हैं उस तक पहुंचाएं। हाँ। तो ये हम लोगों का लक्ष्य है, ये हम लोग का लक्ष्य है, और हम धीरे धीरे इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से, उपलब्धता के माध्यम से हर जगह हम इसको उपलब्ध करवाएंगे।
0: ठीक है,
1: अब हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल तक।
0: चलिए, आप भारत से बाहर निकलें, क्योंकि निश्चित तौर पर जब भारत से बाहर निकलेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमारे भारत की एक पहचान होगी आयोटा वाटर के रूप में, क्योंकि हम यहाँ कुछ अच्छा सर्व कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के बारे में प्लीज आप मुझे बताइए कि जो
2: अरे आपको बादाम खाने की जरूरत भूल गए, दो सवाल मैंने करे थे, एक का जवाब दिया, एक का जवाब नहीं दे पाए। देखा, मैंने आयोटा वाटर पिया था इसलिए मेरी याददाश्त मजबूत है। तो खैर, ये चुप रहिए बहादुर, आप बताइए।
1: बिल्कुल, आपका जैसा निर्देश है बादाम जरूर खाऊंगा।
0: अब तो आप दिल पर लगे।
1: तो स्पोर्ट्स ऐसा रहा कि जब मैं भी खुद बचपन से देखता था, अंक ताले का जो भी होते थे, जो बड़े खेल प्रतिस्पर्धा होते थे,
0: जी जी,
1: उसके अंदर हम देखते थे अंक ताले का, भारत कहीं से नामो निशान भी नहीं होता, कहीं कहीं कुछ एक चंद स्वर्ण पदक, रजत पदक टाइप की चीजें कुछ होती थी। तो स्पोर्ट्स का शुरू से बहुत सारा चुनौतियां रही है स्पोर्ट्स सेक्टर में, और स्पोर्ट्स में जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट्स होता है या पानी की जो आवश्यकताएं होती है जो आए, तो प्लेन वाटर कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो
0: सही नहीं
1: लाभकारी नहीं होता, क्योंकि एक काफी लंबे रेस के बाद आपको पानी होता है, जिसके पीछे विज्ञान होता है, आपको कैसे पानी लेना है, कब पानी लेना है, क्या डाइट फॉलो करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी भी स्पोर्ट्स में, खासकर जो भागने दौड़ने वाले खेल हैं, लाइक मैराथन वगैरह हैं, जो अदर रेसेस हैं, उसमें खिलाड़ी को इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और बॉडी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, आज सारा जो प्रदूषण है, ये सारी चीजें हैं, सब तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही चला रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है, और ये हमारे पानी में 36% ऑक्सीजन है जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाकी पानी के रिस्पेक्ट में,
0: ये क्वालिटीज हैं आयोटा वाटर की, फुलफिल करते हैं।
1: जी जी जी,
0: वेरी गुड, वेरी गुड।
1: तो ये आपको एक आप सम्मान के आप ये चल सकते हैं कि आपको एक अल्टरनेटिव दे रहा है, एक आपको विकल्प दे रहा है। हाँ। कि जिसके अंदर आप ऑक्सीजन तुरंत अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं और अपने आप को पुनर्संचारित कर सकते हैं।
0: वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे शब्द का आपने यहाँ इस्तेमाल किया, और तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है, वो एनर्जी जो एनर्जी ड्रिंक आप आजकल टीवी विज्ञापन में देख रहे हैं

वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ये जो एनर्जी ड्रिंक है, यानी कि ये जो एनर्जी का पेय जल है, पेय पदार्थ है आविटा वाटर, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका जो लाभ है आपको मिलेगा जरूर। एक खास सवाल मैं आपसे जरूर जानूंगा, क्योंकि क्षेत्र बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, मैंने सुना कि अभी आप एक यूथ को भी कनेक्ट करने जा रहे हैं, लोगों को मौका भी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक सवाल और इसका जवाब आपसे हम जरूर जानेंगे। आखिर में एक छोटा सा संदेश भी लेंगे कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए आयोटो वाटर के एक्सपर्ट मिस्टर अजीत कुमार सिंह जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और पानी पानी पानी पानी पानी भरपूर पीजिए। पानी का इस्तेमाल यानी कि कहते हैं ना कि बारिश का जो पानी है उसको भी आप संचरित करिए, इकट्ठा करिए और फिर उसको रिसाइकिल करके आप कहीं ना कहीं रीयूज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं हूं गगन आपके साथ और आई तो वाटर से एक एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए अजीत कुमार सिंह जी, जो कि कई सारे अनुभव के साथ इस कंपनी में जुड़े हैं और वो अनुभव कहां आ रहा है हम देख रहे हैं, धरातल तक वो जा रहे हैं, लोगों की सोच को जान रहे हैं, अपनी सोच को उनसे वाबस्ता कर आ रहे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में बहुत कम समय में बहुत सारे आउटलेट इन्होंने यहाँ स्थापित किए और एक सोच के साथ अभी कह रहे थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम आगे जाएंगे और हिंदुस्तान से भी आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं। आखिर में एक छोटा सा संदेश और एक बात, आप चाह रहे हैं कि यूथ को आप जोड़ें, चाहे वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हों, इंटर्न के तौर पर या किसी भी क्षेत्र से कोई आए, तो वो क्या जरिया हो सकता है कि लोग आपसे कैसे कनेक्ट हों, क्या एक प्लेटफॉर्म होगा आपका, कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा या ईमेल आईडी होगी, वेबसाइट वगैरह वगैरह, जो आप कहना चाहें।
1: आयोटा वाटर का हमारा अपना वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं iotawater.in पे। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है इसी नाम से, प्लस मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है जिसपे आप एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं मेरे से। और वो एक आज जो यंग प्रोफेशनल्स का जो माध्यम है, जो कि हमारे पास जो भारत की जनसंख्या है सबसे युवा देश है विश्व के अंदर, और युवा होने से ये सबसे बड़ी फायदा होता है कि आज जैसे मैं 17 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, तो जो एक नई पीढ़ी आती है हमारे पास, वो एक नई सोच लेके आती है। सोच में उनके भी इनोवेशंस होते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं। जो 18 से 35 वाला आज वर्ग है हमारे पास, जो सबसे ज़्यादा भारत में है, तो उनकी ज़रूरतें अलग हैं। अल्फा बीटा और गामा जनरेशन जो सारे अपकमिंग जनरेशन है, जैन जी हैं पीछे अपने, तो सारे उनकी एक सोच अलग है। आज रियल लाइफ है, सारा डिफरेंशिएशन है। सोशल मीडिया काफ़ी एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है मार्केटिंग का, तो इन सब टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, अपने जो प्रोडक्ट का जो रीच है, अपने प्रोडक्ट के जो इन्फॉर्मेशन है, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारियां देनी है, या जो आपका एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है हमारे जो युवा पीढ़ी काफ़ी संलग्न है और इसका फायदा हमेशा होता है। और मैं इन चीज़ों को हमेशा टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो आपका चलता ही रहता है, जिसको ATL और BTL हम बोलते हैं, और डिजिटल, लेकिन साथ में जब सोशल मीडिया टूल इसमें मिल जाता है तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत।
1: तो माध्यम हमेशा अच्छा एक होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जब बहुत अच्छे उत्पाद को बनाते हैं लेकिन हम उसे पहुंचा नहीं पाते जनता तक, तो उसका बस ये होता है कि उसको मार्केटिंग करने का तरीका जो होता है वो हम चुनते हैं, कैसे चुनना है, कि हमें अमेजोन पे जाने की जरूरत है, कि हमें जनरल ट्रेड्स में जाने की जरूरत है,
0: सुनो शारदा पर आने की जरूरत है, ये भी आप मेंशन करें,
1: और हमें सुनो शारदा पर आने की जरूरत है गगन जी के साथ।
0: अरे सर शुक्रिया, थैंक यू। देखिए हाँ, इसको कहते अपने मुंह क्या कहते, मिठू बनना मिया, मिठू बनना। मैं पूछ रहा था कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए। चलिए सर, हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, आप यही मुस्कुराते रहे, क्योंकि ये मुस्कुराहट आप लोगों से कनेक्ट करती है। मेरी तरफ से आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अजीत कुमार सिंह जी का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया, आयोटा वाटर के बारे में डिटेल में बातें बताई, और एक जिंदगी का सार यही है कि जल को व्यर्थ ना बहाएं,
1: बिल्कुल
0: है ना। ये मैं एक सार आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पानी की टंकी हम लगा लेते हैं, 500 रुपए का अलार्म लगाना भूल जाते हैं, जो कि आपको एक इंडिकेट करता है, सूचित करता है कि आपकी टंकी भर चुकी है, कृपया उसको बंद कर दें। तो ये बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, पानी को व्यर्थ न बहाएं, पानी भरपूर पीजिए, जो कि आपकी सेहत के लिए मुफीद है, लाभकारी है, जल है तो कल है। तो अजीत कुमार सिंह जी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मेरे यानी गगन के साथ, और गगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार, टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।

के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्क

तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: बिल्कुल आपने सही सुना कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में उसका 3 मिनट हो चुके हैं, 7 तारीख है यानी कि मंडे, बोले तो सोमवार का दिन। क्या खास जानेंगे, जरूर मौसम के मिजाज के बारे में बातें करेंगे, ट्रैफिक की अपडेट के बारे में बातें करेंगे, कुछ बातें होंगी आपकी, हमारी ज्ञान विज्ञान की, हमारे आसपास क्या खास है, शारदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में क्या खास हो रहा है उसके बारे में भी जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मोहब्बत एक दीवाना फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक, ए आर रहमान साहब का म्यूजिक, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:11 हो चुके, 7 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। फिलहाल मौसम के मिजाज की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मौसम में
2: समोसे खाइए।
1: नहीं, समोसे नहीं खाने हैं वरना दिक्कत परेशानी हो सकती है। ऐसे मौसम में कुल मिलाकर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, यानी कि लापरवाही नहीं बरतनी है। आज के मौसम का अगर हम जिक्र करें तो ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR के जो क्षेत्र हैं, जो इलाका है, जो एरिया है, क्षेत्र में भारी बारिश के बाद जल भराव के चलते निर्माण कार्यों और VIP मूवमेंट और रिहर्सल की वजह से कई मुख्य मार्गों पर, रास्तों पर भारी ट्रैफिक और डायवर्जन की स्थिति बनी हुई है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रैफिक की अपडेट की बातें, यानी कि किसान चौक पर एक काम चल रहा है जिसकी वजह से अंडरपास के कंक्रीट के काम की वजह से अगले 2 हफ्तों के लिए, ध्यान दीजिएगा, ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। इसका प्रभाव देखने को यह मिलेगा कि गौर चौक, जो किसान चौक के आसपास के जो रास्ते हैं, क्रॉसिंग रिपब्लिक से आने जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और जिससे यहां जो वाहनों की कतारें हैं वो लंबी लगती हुई नजर आ रही है। ब्रिक्स समिट की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स समिट 2026 की सुरक्षा और गाड़ियों के काफिले की जो रिहर्सल है वो रिहर्सल चल रही है और VIP मूवमेंट की वजह से मुझे लगता है कि सबसे पहले आप अपनी कागजी कार्रवाई तंदुरुस्त रखेगा। आपके पास आपका पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। कागज आपके पास फिजिकली गाड़ी में है अच्छी बात, नहीं है तो डिजी लॉकर के माध्यम से सेफ रखेगा, क्योंकि आने वाले समय में ब्रिक्स सम्मेलन 2026 मंडपम में होने जा रहा है, तो इस बात के लिए लक बताइए। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ मौसम के मिजाज के बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सोशल शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। पानी तो हो ही रहा है, वैसे सावन भादों में तो बारिश तो है। बादशाह साहब गाना गा रहे हैं। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल यू सोशल शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, क्या बात है।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
3: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
2: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
3: अबे शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा, देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
2: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
4: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
3: कल नहीं अभी।
4: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
5: हाय मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:20 हो चुके हैं। 7 तारीख है, मंडे का दिन है। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से, भोले बाबा से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, धूप खिली खिली नजर आ रही है और ऐसे समय में ऐसा लग रहा है कि धूप में चले जाओ, चाय पी लो, खटिया डाल लो, सो जाओ। मतलब सोने के अलावा भी जिंदगी है ना, सोना ही जिंदगी है बेटा। अगर तुम सोगे नहीं तो डॉक्टर से पूछो। हाँ, डॉक्टर भी कहते हैं कि नींद भरपूर लीजिए। तो फिलहाल मैं बहादुर की बहादुरी वाली बात को मान लेता हूं। तो खैर, अब जाग जाओ। हाँ अब जाग जाओ, यानी कि अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है कि ग्रेटर नोएडा और यमुना जो इलाका है, तो सुनने में आ रहा है कि ग्रेटर नोएडा पूरी, अगर मैं अपडेट आपके सामने रखूं तो ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में दिन भर बादल छाए रहने और तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। और वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के रहने के, मतलब इसके आसपास रहने का अनुमान है। बादल और बारिश की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ये कह रहा है कि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बादल और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वायु गुणवत्ता जिसको हम बोलते हैं AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। यानी कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है लगभग 97 से 98 के आसपास, यानी कि बोले तो मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और इसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव भी आपकी सेहत पर पड़ता हुआ नजर आता है। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे क्योंकि सच बात तो यह है कि सेहत सही तो लाभ कई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और नॉलेज पार्क का जो गोल चक्कर है वहां ट्रैफिक थोड़ा स्लो रहता है, समझदारी से आगे बढ़ेगा वरना जाम की स्थिति बन सकती है, जाम के जाम से आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिरादर, बिरादर नहीं है, ब्रदर्स, ब्रदर्स फिल्म का गाना गाया जा, फीमेल वर्जन, श्रेया घोषाल की आवाज, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गाड़ी पूरी होशो आवाज में चलेगा। इस गाने को बड़े ध्यान से सुनेगा, दिल के करीब है मेरे ये गाना। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक। बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:32 हो चुके। 7 तारीख है, मंडे का दिन है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने मौसम के मिजाज के बारे में बातें की, ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में, ब्रिक्स समिट 2026 के बारे में, इसके बारे में जो मालूमात निकल कर सामने आ रही हैं, हमारे जो खबरी लाल है वो खबर जुटा कर लेकर आए। सुनने में आ रहा है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित होने जा रहा है और इसकी जो मेजबानी है आप और हम कर रहे हैं, यानी कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। और इसके बारे में जो डिटेल है वो यूँ समझ लीजिए कि तैयारियां जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं और जो डेट निकल कर सामने आ रही है कि 12 और 13 सितंबर 2026 को ये प्रोग्राम होने जा रहा है और जो स्थान है, जो वेन्यू है सम्मेलन का आयोजन, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो स्थित है भारत मंडपम में किया जा रहा है। और इस बार की जो थीम है सुनने में ये भी आ रही है कि बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये थीम रखी गई है और ये भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मानवता सर्वोपरि यानी कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। तो इस बात के लिए लख-लख बधाइयां, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है क्योंकि हमें प्रोग्राम करने का एक अवसर मिल रहा है, हमें मेजबानी करने का अवसर मिल रहा है और दूर दराज से 30 देशों के टॉप मोस्ट नेता लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि होटल्स पर सिक्योरिटी है, होटल बुक हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि 11 सितंबर को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया। भाई और बहनों, यानी कि फ्राइडे सैटरडे और मंडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सम्मेलन खुशी खुशी समापन हो और बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सम्मेलन के लिए। गल मीठी मीठी बोल, सच बात तो ये कि हम गल्ला मीठी मीठी करते हैं और यही वजह है कि सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। आयशा फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक तुझी रहना की आवाज सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:42 हो चुके। 7 तारीख है, मंडे का दिन है। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से हर रोज यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हाँ, ऑफिस में बॉस इंतजार कर रहे हैं कि अभी नहीं आया। चलिए, जब आप सुरक्षित चलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। यातायात के नियम खाद्य कानून का अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी आपके आसपास फटकेगी भी नहीं। हम ऐसा उसको फटकारेंगे कि वो दूर चली जाएगी। लेकिन यातायात के नियमों का अच्छी तरीके से पालन जरूर करिएगा। हाँ, ये आवाज मोटू पतलू वाली। चलिए, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि कुछ कुछ बातें हो रही थी ब्रिक्स समिट के बारे में। बहुत खुशी होती है कि जब भारत की मेजबानी में ये समिट होने जा रहा है, सम्मेलन होने जा रहा है, तो चाक चौबंद यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से ऑन रोड जब आप निकल रहे हैं तो आपके पास आपका पहचान पत्र, कागज, यानी कि अगर आप गाड़ी में है, व्हीकल में है, तो वो जो पेपर्स होते हैं वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। डिजी लॉकर में अगर आपके पास हैं तो वो तो और अच्छी बात है, उसके अलावा कोई और अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और फिलहाल चाक चौबंद है दिल्ली NCR। 11 तारीख यानी कि सुनने में ये आ रहा है कि इस ब्रिक्स सम्मेलन की वजह से दिल्ली में, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में 11 तारीख का अवकाश रहने वाला है। और मौसम का जो मिजाज है उसके बारे में हम बता चुके हैं कि आने वाले समय में सुनने में आ रहा है कि मौसम साफ रहने वाला है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 3 जिलों के स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है, जिसमें कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। और वहीं नैनीताल की अगर हम बात करें तो नैनीताल में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपका कोई खास वहां है तो आप उनकी कुशलक्षेम पूछ सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुन शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। आ अब लौट चले फिल्म का ये गाना मैंने आपके लिए प्ले किया। सच बात तो ये कि जब आपका देश, आपका घर, आपका गाँव बुलाता है तो तभी बातें निकल कर सामने आती है कि आ अब लौट चले। और मुझे लगता है कि सुकून सबसे बड़ी चीज है, फैमिली बहुत बड़ी चीज है। रुपया तो आप कमा ही रहे हैं, कमा लेंगे, लेकिन जब आप अपने कोई अपनों के बीच में जाते हैं, वो चाहे पुराने दोस्त हों, पुराना वो पेड़ हो, पुराने लोग हों, पुराना घर माहौल हो, तो सबसे बड़ी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। और सुकून की तलाश में जिंदगी भर हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त रहते हुए अगर हमने ये हासिल कर लिया तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। वक्त का इशारा हो रहा है, यानी कि मैं हो रहा हूं 9:11, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो देखते हैं कि आज के दिन कुछ खास हुआ है, तो उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। भारतीय इतिहास की जो कुछ खास घटनाएं हैं, जैसे कि आज के दिन लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आज ही के दिन हुआ था, और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बैंक ऑफ इंडिया की 1906 में आज ही के दिन मुंबई के प्रतिष्ठित जो उस समय के जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे, एक समूह ने आज ही के दिन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और कुछ खास बातें और निकलकर सामने आ रही हैं कि जैसे कि जो नीरजा भनोट का नाम हमने सुना है, कराची में जो एक विमान था 73 यात्रियों की जान बचाते हुए शहीद होने वाली नीरजा भनोट, उनको अशोक चक्र से सम्मान किया गया। नीरजा भनोट का आज जन्मदिन है, उनके काम को हम दिल से सलाम करते हैं। वक्त का इशारा मैं हो रहा हूं 9:11, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ खुश

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन ग्रेटर नोएडा का, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत आज हमारे साथ में है डॉक्टर अलका गुप्ता। आप ACMO हैं और साथ में आप DSO भी हैं, और आज हम बात करेंगे, जैसा कि सभी जानते हैं बरसात का मौसम है, और ऐसे मौसम में आपको पता ही है कि सांप, कांतर, बिच्छू ये निकल आते हैं। जब इनके बिलों में पानी भर जाता है तो घर की तरफ भी आ जाते हैं, और वैसे भी इनको छुपने के लिए स्थान चाहिए, और जब हम असावधानी पूर्वक कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इनके शिकार हो जाते हैं। अगर कोई भी शिकार हो जाता है तो क्या कुछ करना चाहिए, इन सब विषयों पर आज हम बारी बारी से जानकारी करेंगे। तो डॉक्टर अलका गुप्ता जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद आपका। और आपने ये बहुत ही अच्छा विषय उठाया है, और इसमें आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का। तो जैसा बताया ही है कि इसमें जो है, जो सरीसृप वर्ग है उसके जो बिल है उनमें पानी भर जाता है, तो इसकी वजह से वो बाहर आ जाते हैं और छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। इस वजह से मनुष्यों के संपर्क में इस मौसम में ज़्यादा आते हैं। तो सबसे तो इसमें जो गंभीर विषय है वो सांप काटने का हो जाता है। बाकी जो जो जानवर हैं वो अगर काट लेते हैं तो उनका उपचार हमारे आप नज़दीकी CHC PHC या कोई भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मनुष्य घबरा जाता है कि अगर उसको सांप ने काट लिया है तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, उस जगह को स्थिर रखना है, उसमें पट्टी बांधना या कुछ ऐसे उस घाव पे ऐसा कुछ करना नहीं है, और आपको शीघ्र ही तुरंत आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है। हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है, और वहाँ पर आपका प्राथमिक उपचार भी होगा और आपको एंटी स्नेक वेनम की डोज भी मिल जाएगी, जिससे कि आप इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं।
0: कई बार तो ऐसा होता है किसी को सोते में काट लिया और वो जो भी कीड़ा है या सांप है बिच्छू वो चला भी गया, पता भी नहीं चला कि कौन हमको काट गया, तो उसकी वो पहचान कैसे कर सकते हैं कि हमको सांप ने काटा है?
1: लेकिन सुनना पड़ जाएगा, नीला हो जाएगा वो जगह पर, लेकिन ये पहचान अगर नहीं हो पा रही है कि जहरीला है या नहीं है, फिर भी आप उसमें सावधानी वश आप एंटी स्नेक वेनम ले लीजिए। कि मान लीजिए अगर जहरीला है तो एंटी स्नेक वेनम की डोज उस पर काम करेगी ही, नहीं भी है तो भी एक प्रिकॉशनरी आप एंटी स्नेक वेनम ले लेंगे तो उसमें ये डर निकल जाएगा कि अगर जहरीला सांप है तो काट लिया तो विष फैल सकता है उसका, तो आप एंटी स्नेक वेनम आपको दोनों ही केस पे लेना ही है।
0: तो जैसे आपने बताया, अब हम बात कर लेते हैं कि जब सांप ने या बिच्छू ने किसी को काट लिया है उस टाइम बहुत अफरा तफरी मच जाती है, हायतौबा हो जाती है, तो उस समय क्या कुछ करना बहुत आवश्यक है?
1: देखिए, उस समय तो सबसे पहले बहुत परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति डर की वजह से उसको इतना उसमें डर व्याप्त हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभी मौत हो जाती है कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो इसलिए धैर्य संयम बनाए रखना है, और उस जगह को आपको हिलाना नहीं है, उसमें कुछ जैसे चूसना या पट्टी बांधना या ऐसा कुछ भी नहीं करना है उस घाव वाली जगह पर। ये है, आप रनिंग वाटर से धो सकते हैं, बहते हुए पानी से, साबुन के पानी से घोल से आप धो लीजिए, और तुरंत ही आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और एंटी स्नेक वेनम की डोज ले लीजिए। आपने अगर देख लिया है कि सांप ने नहीं काटा, किसी और जानवर ने काटा, तो जलन हो सकती है उसमें, तो उसमें प्राथमिक उपचार और कुछ एंटी स्टेरॉयड वगैरह दवा लेने से आराम हो जाएगा, वो आपको स्वास्थ्य केंद्र पर मिल जाएगी। और अगर सांप ने काटा है तो फिर आपको एंटी स्नेक वेनम लेना ज़रूरी हो जाता है। इसमें समय ना गंवाते हुए तुरंत ही आपको जाना रहता है, क्योंकि समय बहुत इसे महत्वपूर्ण रहता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर अलका गुप्ता जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। तो हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल भी समय ऐसे ना गवाएं, समय बहुत ही मतलब इस सिचुएशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जल्दी से जल्दी अपने जो नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है तो वहाँ जा करके इसका जो टीका है वो अवश्य लगवा लें, ताकि आप इस जानलेवा बीमारी से बच जाए।
1: एक विषय मैं और कहना चाहती हूँ कि जैसे इस समय पानी भर गया, कई क्षेत्रों में बाढ़ भी आई हुई है, तो जो ये चछुंदर और ये जो चूहे काट लेते हैं इनसे भी बीमारी होने का खतरा रहता है। तो इसके लिए भी अगर आपको चछुंदर या चूहे ने काटा है तो उसके लिए भी आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आपको उपचार लेना है।
0: ये तो आपने बिल्कुल नई बात बताई है, अक्सर होता है कि आप सो रहे हैं और चूहा आपको काट के चला जाता है, तो जरूर आप नजदीकी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जाकर के उसका टीका अवश्य लगवा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई बीमारी ना हो। डॉक्टर अलका गुप्ता जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे जो समुदाय के लोग हैं जरूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, जागरूक होंगे, औरों को भी जागरूक करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
3: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
2: क्या है राज?
3: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है, तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: बाजी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरे। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई, अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: महामारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महामारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
1: यदि महामारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेटकर उसे पेट पर रखें।
0: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। और जैसा कि आप जानते हैं, बताते रहते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य सही रहता है तो आपको लाभ ही लाभ होते हैं। आप अपने घर के काम अच्छी तरह से कर पाते हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं वो भी ढंग से कर पाते हैं और घर की आपको चिंता भी नहीं रहती है। तो बहुत से काम हमारे इस तरह से बनते हैं जब हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। और कई बार ऐसा होता है जो हमारे समुदाय के लोग हैं, कोई स्वास्थ्य परेशानी हो जाती है जिसमें कोई गंभीर बीमारी है तो इलाज कहाँ पे कराएं, महंगा इलाज होता है आसपास, लेकिन अपने खासकर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम इन सब बातों की जानकारी करेंगे कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है खास करके कौन कौन सी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, जिनका के लाभ जो भी स्वास्थ्य का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और सरकार की बहुत सारी योजना भी हैं स्वास्थ्य की, तो उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर मदन मोहन मणि त्रिपाठी जी, उनसे हम सब बातें जानेंगे। सर, अपना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है नोएडा का, तो कौन कौन सी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं लोगों के लिए?
1: हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पेडिया, ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और जो भी जैसे डिलीवरी के लिए लोग बाहर कहते हैं 50,000 लग गया, 20,000 लग गया, डिलीवरी में सारी सुविधाएं यहाँ पर मुफ्त हैं, सारी दवाएं भी मुफ्त हैं और आपको डिलीवरी के बाद 1400 रुपया भी दिया जाता है। आई डिपार्टमेंट है यहाँ पर, चश्मे भी बनते हैं और दूसरी चीज़ आँखों की जाँच होती है। नीचे जिला अस्पताल में ये है कि वैक्सीनेशन भी होता है बच्चों का, बहुत से लोग आते हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर मेडिसिन विभाग है, सर्जरी विभाग है, हार्निया, हाइड्रोसील, गाल ब्लैडर, अपेंडिक्स, ये सारे ऑपरेशन होते हैं। ENT है जिसमें सर्जरी होती है, टिम्पैनोप्लास्टी होती है, मायरिंगोप्लास्टी होती है, नेजल बोन सर्जरी होती है। बाकी यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, हमारे यहाँ NRC है, SNCU है, ये सारी सुविधाएँ जिला अस्पताल में मौजूद हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, हड्डी का ऑपरेशन भी होता है टूटने पर, तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन जनता को जानकारी के अभाव में सब प्राइवेट अस्पताल में, चाहे कुछ दलालों के चक्कर में लोग पढ़ के बाहर की सुविधाएं ले रहे हैं जो बहुत महंगी हैं।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने बताया बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऑपरेशन की सुविधा भी हैं, दांतों की बात करें तो हम हाइड्रोसील हर्निया की बात करेंगे, तो अपने यहाँ पर कितने सर्जन हैं जो इसका काम देखते हैं?
1: अभी 2 सर्जन हैं हमारे यहाँ काम देख रहे हैं, सारे ऑपरेशन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: जैसे हाइड्रोसील हो गया, हर्निया हो गया, वैरिकोसील लगा, तो कोई भी सर्जन कर सकता है तीनों का ऑपरेशन?
1: जनरल सर्जन कर सकते हैं, जनरल सर्जन। अब जैसे गुर्दे का ऑपरेशन हुआ तो उसमें यूरोलॉजिस्ट का काम है, जैसे हेड इंजरी हुई तो उसमें न्यूरो सर्जन का

0: काम है, ये सब सुपर स्पेशलिटी हैं।
1: तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। अक्सर जो हर्निया या हाइड्रोसील है, लोग लोक लज्जा की वजह से भी इसके बारे में बात नहीं बता पाते और पता भी नहीं होता है उनको। और ज़रूर हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हाइड्रोसील, हर्निया, वेरिकोसील बड़ी आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा सर आपसे जानना चाहेंगे जो गर्भवती महिलाएँ, खासकर जो प्रसव जिनका होता है, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएँ?
0: गर्भवती महिलाओं के लिए देखिए, उनके लिए सारी सुविधाएँ गवर्नमेंट कर रही है। पहली चीज तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है कि जो भी गर्भवती माता हो उसको खून की कमी ना होने पाए, रक्ताल्पता जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इनका 4 ANC होता है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, ये 4 ANC होता है। और उसके बाद से उसमें इनका टीकाकरण भी होता है टिटनेस से, फिर उसके बाद से इनको आयरन, फोलिक एसिड दवाएँ दी जाती हैं। एक आशा उस क्षेत्र की इनके साथ हमेशा लगी रहती है, जब प्रसव का समय आता है उसके पहले भी अल्ट्रासाउंड करा दिया जाता है कि जैसे नाल उल है गले के अंदर तो नहीं फंस रही है, चाहे और कोई परेशानी है, उसके साथ हमेशा लगी रहती है। और जब डिलीवरी का समय आता है तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती करके, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं तो सीजेरियन प्रसव से बच्चा पैदा होते हैं।
1: बिल्कुल, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, खासकर जिनका प्रसव होता है। सुनो शारदा 90.8 FM से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

इसीलिए तो कहता हूं यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। बाकी

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Solo Sharda.
6: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
7: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, आज का जो दौर है वो आधुनिक दौर है, हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के साथ हमको खेती में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे, तभी हम समय के साथ कदम से कदम बढ़ा के चल सकेंगे और अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। किसान मित्रों, जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश, आंधी, गर्मी और कीटों के प्रकोप से आपकी फसलों को बहुत नुकसान होता है। इसीलिए खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाइयों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कैसे खेती की जाए ताकि जलवायु परिवर्तन का असर हमारी खेती पर कम से कम हो। तो जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए हमारे किसान भाई संरक्षित खेती कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और ये संरक्षित खेती आजकल बहुत की जाती है और अनेक हमारे किसान भाई थोड़ी सी जमीन में बहुत सारा लाभ कमा रहे हैं। किसान मित्रों, संरक्षित खेती में फसलों को मौसम की मार, रोग और कीटों के साथ साथ खरपतवारों और पशुओं से संरक्षित करके खेती की जाती है। इसमें जो तकनीक अपनाई जाती है उसमें पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, पुआल और सूखे खरपतवारों से मल्चिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संरक्षित खेती कृषि की एक आधुनिक और वैज्ञानिक विधि है जिसके अंतर्गत पौधों को प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों या यूं कहें प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी, तेज ठंड, तेज हवा, तेज प्रकाश की तीव्रता, अत्यधिक बारिश, सूखा, इन सब से बचाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं जो फसल के विकास में मदद करती हैं, और इस तरह से इस तकनीक से बेहतर गुणवत्ता और उच्च पैदावार प्राप्त की जा सकती है। किसान मित्रों, संरक्षित खेती में विभिन्न प्रकार की कृत्रिम संरचनाएं बनाई जाती हैं, जैसे पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ग्लास हाउस, वॉकिंग टनल और लो टनल। इन संरचनाओं के अंदर तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह, प्रकाश की तीव्रता और कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है और पौधों की वृद्धि के अनुकूल सभी परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। और किसान मित्रों, अब बात करेंगे संरक्षित खेती के लाभ के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और रविंद्र खालोर, किस्सा रहेगा श्रवण कुमार का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये रागनी सुनील चौहान और रविंदर खालौर से। किस्सा था श्रवण कुमार का। किसान मित्रों, आधुनिक तकनीक से फसलों की संरक्षित खेती करके अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नवीनतम तकनीक से सुसज्जित नियंत्रित वातावरण में फसलों की खेती की जाती है। प्लास्टिक लो टनल, प्लास्टिक हाई टनल, प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। संरक्षित खेती के तहत फसलों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जहां जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो हमारे किसान भाई तो यही चाहते हैं कि लागत कम हो और किसी भी मौसम में उनको अच्छा उत्पादन मिले। एक और महत्वपूर्ण बात किसान मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि संरक्षित खेती में हम बेमौसम की फसलों को भी उगा सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जब आप कोई भी अगेती फसल उगाते हैं तो उसका दाम बाजार में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सब काम आप कर सकते हैं संरक्षित खेती के द्वारा। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि संरक्षित खेती से हमारे किसान मित्र विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन नवीनतम तकनीकों को अपनाने से पर्यावरण की तुलना में फलों, फूलों और सब्जियों की उत्पादकता को 4 से 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इन तकनीकों के तहत अच्छी उत्पादकता के साथ साथ फसलों की बेहतर गुणवत्ता भी प्राप्त होती है। प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक आय प्राप्त करने के लिए हमारे जो ग्रामीण युवा हैं, इन तकनीकों को अपना सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। और किसान मित्रों, अब आखिर में आपके मन में ये बात आ रही होगी कि संरक्षित खेती करने के लिए जो संरचना बनाई जाती है, जितने भी उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, वो हम कहाँ से लें, कितना पैसा खर्च होगा उसमें। तो इन सब बातों की जानकारी आप ले सकते हैं आपके नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि केंद्र में। आपके जिला कृषि अधिकारी हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संरक्षित खेती करने के लिए जो भी संरचना बनाते हैं और उसमें जिस चीज की भी आवश्यकता होती है, सरकार आपको अनुदान भी देती है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना संरक्षित खेती के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना से ये उपदेश। किसान मित्रों, जब हमारे गांव का विकास होता है तो हमारे देश का विकास होता है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, यानी कि हमारे किसान भाइयों की अच्छी आमदनी होगी तो हमारे देश की ताकत बढ़ेगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर आएगी। इसीलिए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान शुरू किया था। किसान मित्रों, आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं में विकास और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया ये अभियान केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। ये अभियान 14 अप्रैल 2016 को समाज सुधारक डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की स्मृति में शुरू किया गया था, जिन्होंने पंचायती राज के विकास और वंचित वर्ग के समान अधिकारों के लिए प्रयास किया था। इसे ग्राम स्वशासन अभियान के नाम से भी जाना जाता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। किसान मित्रों, इस अभियान का मूल उद्देश्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की दृष्टि से प्रेरित होकर गांव में सामाजिक सद्भावना को बढ़ाना, फसल बीमा योजना और मृदा कार्ड के बारे में जानकारी देकर कृषि को बढ़ावा देना, ग्राम सभा की बैठकों का प्रबंधन करना ताकि क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए पैसे का सही उपयोग हो सके। इसके अलावा अगर हम इस अभियान के लाभों के बारे में बात करें तो इससे कृषि उत्पादकता और खेती के तरीकों में सुधार होगा, गांव के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा और हमारे जो युवा हैं उनको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि वे सामाजिक आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ सके। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किस्सा रहेगा हीर रांझे का, तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप हीर रांझे के किस्से से रागनी सुन रहे थे। कलाकार थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। और अब किसान मित्रों, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: क्यों, कैसे परेशान नजर आ रही हो?
1: मैं आज मैं बेहद परेशान हूँ। क्यों? कि मेरी जो लड़की है नहीं, बड़ी उर्मिला,
0: अच्छा
1: ये शादी के योग हो गई और मुझे इसकी तमन्ना बहुत ज्यादा है। इसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए।
0: तो तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: हाँ।

0: क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: तो इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
1: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
0: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
1: बहुत मजा आएगा।
2: हाय तारा।
1: ओह हाय चमन, आओ मेरे साथ फल खाओ, फिर हम खेलेंगे।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
1: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
2: अरे तारा ये क्या?
1: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
1: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
1: और नल या पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे,
1: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: Oh,
1: cuman-cuman abang kini.
2: Okey. Tara! Tapa! तारा मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
1: पीने का पानी? चुमन रुको, हाथ को खड़ी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
2: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
1: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
2: हैं?
1: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
3: अरे बाबा रे, तो फिर

0: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
1: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
1: अप्पा।
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया।
3: अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
1: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
4: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है,
3: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
4: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो, आज से अभी से शुरू करो। खुद का पानी खुद निगरानी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: रेडियो आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। श्रोताओं, शादी के खूबसूरत बंधन में बंधते समय एक लड़की हजारों सपने देखती है और उन सपनों को संजोते हुए अपने घर की दहलीज लांग कर दूसरे घर जाती है जहां वे उम्मीद करती है कि प्यार और विश्वास की डोर से वो सबको अपना बना लेगी। लेकिन जब अपने रिश्ते ही कांटा बनकर चुभने लगे तब एक औरत कहां जाए। तो आइए चलते हैं एक ऐसी ही कहानी की ओर और जानते हैं कि स्नेहा कौन है और आज उसके घर पर इतनी चहल पहल क्यों है।

0: लड़कियों अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, जाओ जाओ बारात आने वाली है, किसका इंतजार कर रही हो, चलो चलो जल्दी करो, चलो जाओ।
1: माँ परेशान क्यों हो रही हो, सब हो जाएगा, चिंता मत करो।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, पर अब तू भी जल्दी कर, बारात आने वाली है।
1: माँ वो सब छोड़ो, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ।
0: बहुत सुंदर। अच्छा ये बता तेरे पापा कहाँ हैं? अभी तक तैयार हुए या फिर नहीं? अरे बारात आने वाली है और अभी तक इनका कोई अता पता नहीं।

0: नहीं मत मारिए, मत मारिए, आह नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मुझसे हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूंगी, छोड़ दीजिए मुझे।
1: अरे श्याम बेटा, और फिर करमजली ने क्या करके रख दिया?
2: अरे माँ, इसका वही रोज रोज का स्यापा, वही रोज रोज का तमाशा। मैं कितनी बार कह चुका हूँ इसे कि मुझे सुबह 8 बजे चाय दे दिया कर, मुझे सुबह 8 बजे चाय मिल जानी चाहिए, लेकिन इसको है कि समझ आता ही नहीं, मुझे चाय ही नहीं, मुझे चाय नहीं मिलती 8 बजे, और अब मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। सुबह सुबह सारा मूड खराब करके रख दिया माँ इसने मेरा।
1: कोई बात नहीं बेटा, तू ऑफिस जा, इसको मैं देखती हूँ। अरे करमजली, तुझे कब अकल आएगी, जिंदगी हराम करके रख दिया हम लोगों की। क्या सोचा था कि एक पैसे वाली बहू लेकर आएंगे और घर में आ गई तू।
0: माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है?
1: जुबान लड़ाती है मुझसे।
3: बेटी कैसी है तू?
0: माँ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सास और पति मुझे रोज रोज बहुत पीटते हैं, मैं तंग आ गई हूँ और अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से।
3: अरे सुनेहा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर इस तरह नहीं करते, घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अब हर बात पर तू मायके उठ कर आ जाएगी, ऐसा नहीं करते हैं बेटा।
0: माँ यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, ये लोग मुझे मार डालेंगे।
3: सुनेहा पहले तू मेरी बात सुन, तू दामाद जी की सारी बातें माना कर और उनसे बहस बिल्कुल मत किया कर, समझी? बाकी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं फोन रखती हूँ, तू अपना पूरा ध्यान रखना।
2: स्नेहा, स्नेहा
0: जी आई।
2: कब से आवाज लगा रहा हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी खाना लेकर आ मेरे लिए, भूख लगी है मुझे बहुत ज्यादा।
0: अभी लाती हूँ, ये लीजिए।
2: ये क्या बनाया है तूने? इसे तू खाना कहती है? जहर है ये जहर, जहर लाती है मेरे लिए, हैं? बेवकूफ बनाती है बार बार मुझे, कितनी बार समझाऊं तुझे?
0: बचाओ, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो।
2: छोड़ूंगा तुझे,
0: छोड़ दो मुझे।
2: अरे जा दफा हो यहाँ से।

0: शादी का बंधन बड़ा ही खूबसूरत सच है, लेकिन ये सच किसी की जिंदगी का खौफ भी बन जाता है। हम लोग समाज को लेकर तो बड़े सजग रहते हैं कि ऐसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे या वैसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे ये सवाल इतना बड़ा हो जाता है कि इसके नीचे एक औरत का जीवन, उसके सपने और उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब जागरूक हों और जब भी किसी महिला के साथ हिंसा होते देखें तो जरूर उसके खिलाफ आवाज उठाएं और कहें हिंसा को नो। यदि इस कार्यक्रम से जुड़े आपके भी कोई विचार या कोई सवाल है तो हमें इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7018712909। आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120406025 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: Chowda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए। यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: आई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बिना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मेरा फेवरेट हलवा केक बनाने के लिए थैंक यू।
2: जन्मदिन मुबारक हो तारा।

0: अरे हमारे यहाँ कचरा तो काम वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे?
1: टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो सभी का काम है। अब्बा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
0: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पाती।

0: भी करेंगे कचरा पार्टी।
1: हाँ हाँ, हमें जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
2: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
3: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
2: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
1: हाँ, बाहर सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
4: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
5: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
6: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
5: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
6: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा है।
2: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
5: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
6: बहुत अच्छे तारा, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
7: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दे तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
4: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
6: नहीं चंदन, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
5: वाह, कचरा भी आएगा तुम्हारा काम। तो ये गया गीले कचरे में।
1: और मेरे पास है सूखा कचरा।
6: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह घर पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
5: हजारों साल तक सड़ते नहीं
4: और खतरनाक भी होते हैं।
6: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह, अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो।
5: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाली दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुप गए तो।
7: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े।
6: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
4: वाह, बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
6: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
5: अब आप देखिए अब्बा, हमारी कचरा कला। कचरा पार्टी की कचरा कला।
4: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
8: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
3: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और आप सभी श्रोताओं को अजीत का भी नमस्कार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार
2: जो हमें भेजा है राजेश कुमार विद्यार्थी जी ने और वो लिखते हैं
3: मुस्कान वो चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है।
2: जी
3: तो अपने चेहरे पर मुस्कान जरूर बनाए रखें।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी जी। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम।
3: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी गुर्जर।
2: गिर्रा पलारी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार साहू, आशीष कुमार साहू।
3: गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक।
2: गांव दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा।
3: आप सबों का संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी
3: तो श्रोताओं अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबसे प्यारी श्रृंखला
2: ये भी जानिए। इस श्रृंखला की कड़ी में आज हम जानेंगे भाषा के मशीनी अनुवाद से जुड़ी एक रोचक घटना के बारे में।
3: श्रोताओं हम सब जानते हैं कि अब किसी भी भाषा का अनुवाद बड़ी आसानी से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कंप्यूटर, इंटरनेट और एप्स के द्वारा किया जा सकता है।
2: वैसे मशीनों द्वारा भाषा के अनुवाद का काम आज से लगभग 70 वर्ष पहले से ही हो रहा है, लेकिन तब इस काम की प्रगति उतनी अधिक नहीं हुई थी।
3: श्रोताओं हुआ ये कि रूस में जन्मे गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन उस समय के मशीनी अनुवाद के उपकरणों से निराश थे। एक बार की बात है वे कार्यालय के काम से अपनी टीम के साथ चीन गए थे।
2: जी
3: तो कार्यालय की बैठकों में तो दुभाषिये मिल जाते थे, लेकिन
2: बाजारों में, सामुदायिक जगहों पर या कहीं घूमने जाने पर उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्गेई ब्रिन के मन में एक विचार आया, हम सारी सुविधाओं से लैस हैं, यदि हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो
3: आम लोगों को भला कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा जो विदेशों में जाते हैं और वहाँ की भाषा नहीं समझते।
2: परिणाम स्वरूप उन्होंने दुनिया को गूगल ट्रांसलेट सुविधा देने का निर्णय किया और ये 2004 की शुरुआत में केवल 2 भाषाओं अंग्रेजी और रूसी भाषा के साथ शुरू हुआ।
3: श्रोताओं गूगल ट्रांसलेट को 2 भाषाओं के साथ सन 2006 में पेश किया गया था और जून 2024 तक यह सुविधा दुनिया की 243 भाषाओं में उपलब्ध है।
2: जी
3: इतना ही नहीं अब भाषाओं के अनुवाद के लिए AI पर और भी एप्स उपलब्ध हैं जिनसे दुनिया भर में लोगों को आपस में संवाद करना बहुत आसान हो गया है।
2: श्रोताओं आशा है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए।
3: तो हमारा आज का प्रश्न है सबसे पहले किन 2 भाषाओं में मशीनी अनुवाद का काम शुरू हुआ। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सबसे पहले किन 2 भाषाओं में मशीनी अनुवाद का काम शुरू हुआ।
3: तो आपको हमारा नंबर याद होगा लेकिन एक बार फिर से नोट कर दीजिए 8800440559 है हमारा IVRS फोन नंबर।
2: audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता, अवश्य संदेश और उत्तर भेजिएगा।
3: और अब है बारी कार्यक्रमों की। श्रोताओं उमंग प्रसारण की कड़ी में सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम बिरसा मुंडा।
2: श्रोताओं अभी हाल में ही हमने महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। आइए सुनते हैं कैसे इस महान स्वाधीनता सेनानी ने आजादी के लिए अंग्रेजी शासन से संघर्ष किया और आजादी के आंदोलन को एक नई धार दी।
4: बिहार के दक्षिणी भाग में पहाड़ और घने जंगल हैं। इन जंगलों में कई आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इन्हीं में से एक है मुंडा। सैकड़ों वर्षों से मुंडा जाति के लोग जंगल के सहारे जीते आ रहे हैं। जंगली कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते, जंगली फलों के बीज कूटकर तेल निकालते और उससे अपने घरों में दिए जलाते। मुंडा परिवार मोटा अनाज या घास के दाने उबालकर घाटों खाते थे। 5-10 रुपयों के लिए जमींदारों और साहूकारों के पास बेगार करनी पड़ती थी। लोग खेतीबाड़ी भी करते लेकिन अधिकांश लोग दूसरों के खेतों में मजदूरी करके उनके पशु चराकर अपना पेट पालते। अब से कोई 100 साल पहले इनकी दशा बहुत खराब थी। ऐसे ही समय में सन 1875 में चालकाद के एक निर्धन परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार या वीरवार को जन्म लेने के कारण इस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया।

0: यही था मुंडाओं को उनके जातीय गौरव की याद दिलाने वाला बिरसा मुंडा।
1: बिरसा, अरे ओ बिरसा, कहाँ है रे तू?
2: क्या है माँ, मैं इधर हूँ।
1: तू फिर अकेला जंगल गया था? कितनी बार तुझसे कहा है इस तरह जंगल में अकेला मत फिरा कर। अरे कहीं कोई सांप बिच्छू काट ले या बाघ भालू उठा कर ले जाएगा तो?
2: तू घबरा मत माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये जंगल है ना, ये मेरा दोस्त है। इसके सब जानवर मेरे भाई बहन हैं। ये मुझसे बातें करते हैं।
1: लो और सुनो इस लड़के की बातें। क्यों रे, तू सारी दुनिया से निराला है क्या? आज तक तो कभी नहीं सुना कि जंगल और जंगली जानवर किसी से बातें करते हैं।
2: सुनोगी कैसे, ये किसी और से थोड़ी ही बातें करते हैं।
1: हाँ हाँ, तू तो कोई खास पुरुष है, सिंह बोंगा का अवतार है ना, जो जंगल तुझसे बातें करेगा।
2: अच्छा तो फिर ये बताओ कि जंगल में सबसे अच्छे कंदमूल और फल कहाँ है, इसका पता सबसे पहले मुझे क्यों चल जाता है?
1: मुझे क्या पता?
2: जंगल में जाते ही अच्छे अच्छे खरहे और तीतर मुझे कैसे मिल जाते हैं? पोखर में कांटा डालते ही मछलियाँ कैसे फंस जाती हैं? क्यों मेरी ही बंसी की तान सबसे मीठी होती है?
1: अच्छा अच्छा अच्छा, रहने दे, ज्यादा बातें ना बना, चल घर जा, घाटों रांध कर रखाई हूँ, खा लेना, मैं जरा पानी लेने जा रही हूँ।
2: आज फिर घाटों ही बना है, भात नहीं।
1: भात क्या हमारे नसीब में है बेटा, दोनों जून अगर नमक के साथ घाटों ही खाने को मिल जाए तो बड़े भाग समझो।
2: सब दिन ऐसा नहीं रहेगा माँ, तुम देख लेना।
1: अच्छा,
2: मैं कहता हूँ मेरी बात गांठ बांध लो। एक दिन सब मुंडा दोनों जून भर पेट भात खाएंगे। सबके घर थैला भर नमक और डिब्बा भर तेल रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। ये जंगल, ये धरती सबको पेट भर खाना देगी।
1: कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है ये रे।
0: नन्हे बिरसा की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ कर्मी और पिता सुगाना मुंडा परेशान हो जाते। बिरसा दूसरे मुंडा बच्चों जैसा क्यों नहीं? क्यों ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि सुनकर डर लगने लगता है।

जब बिरसा 8-9 वर्ष का हुआ तो उसके माँ बाप ने उसे उसके मामा के गांव भेज दिया। वहां रहकर बिरसा ने गांव की पाठशाला में पढ़ना लिखना सीखा और फिर मिशन स्कूल से लोअर प्राइमरी की परीक्षा पास की। इसके बाद अपने गांव चालकाद आकर बिरसा ने अपने पिता से आगे पढ़ने की जिद की। सुगाना समझ नहीं पाता था कि बिरसा इतना पढ़कर करेगा क्या, लेकिन उसने बिरसा को चाईबासा के मिशन स्कूल में भर्ती करा दिया। यहां बिरसा का नया जीवन शुरू हुआ, साबुन से नहाना, साफ सुथरे रहना और पढ़ना लिखना।

0: बिरसा, ए बिरसा।
1: क्या है डेविड?
0: उधर देख, वो जो फाटक पर बूढ़ा खड़ा है ना, वो तुझे बुला रहा है।
1: मुझे?
0: हाँ,
1: पर वो है कौन? मैं तो उसे जानता तक नहीं।
0: लेकिन वो तो तुझे जानता है, कहने लगा वो बिरसा मुंडा है ना, चाल काद के सुगाना मुंडा का बेटा। मैंने कहा हाँ, तो कहने लगा उसे जरा मेरे पास भेज दो बेटा, जाना एक बार मिला।
1: मैं?
0: हाँ, क्या पता चाल काद से तेरे आबा का कोई संदेशा लाया हो।
1: अच्छा, जाता हूँ।
0: हाँ,
2: तू बिरसा है ना?
1: हाँ, मैं तो बिरसा हूँ, पर तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं।
2: तू कैसे पहचानेगा भगवान, मैं धानी मुंडा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अब भी आसपास के जंगलों में कोई दूसरा नहीं है जो मेरे जैसे तीर बना सके।
1: अच्छा?
2: 50 बरस से सरदारों की मुल की लड़ाई के लिए तीर बना रहा हूँ, कुचली के जहर में बुझाकर ऐसे विषैले तीर बनाता हूँ कि लगते ही प्राण ले लें।
1: ठीक है, पर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो?
2: बताने नहीं, पूछने आया हूँ भगवान। मैंने बहुत से तीर बनाकर जंगल में छिपा रखे हैं, तुझसे पूछने आया हूँ कि उन तीरों का काम कब पड़ेगा।
1: मुझे क्या मालूम, और ये तुम मुझे बार बार भगवान भगवान क्यों कह रहे हो?
2: इसलिए कि तू ही हमारा बिरसा भगवान है, हमें दिक्कुओं के अत्याचार से मुक्ति दिलाने, हमारे दुख दूर करने आया है।
1: ओफो, क्या मुसीबत है। अरे बाबा, ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं भगवान हूँ?
2: मैं सब जानता हूँ, और मेरी बहन है ना, वो तो मुझसे भी बूढ़ी है, सब कुछ जानती है वो। उसने एक दिन तुझे हाट में देखा था, देखते ही पहचान गई, मुझसे बोली भगवान आ गया है, अब हमारे कष्ट दूर होंगे। वो तेरा पीछा करती यहाँ तक आई थी, तेरे रहने की ये जगह देख गई, उसी ने मुझे सब कुछ बताया।
1: पर क्या बताया, मुझे भी तो बताओ।
2: बड़े बूढ़े कहते थे एक दिन हमारा भगवान आएगा, वही फिरंगी हाकिमों और दिक्कुओं को भगाकर हमें हमारी जमीन वापस दिलाएगा। उसी दिन की तैयारी में मैंने ढेर सारे तीर बनाकर रखे।
1: क्या?
2: जब तू हुक्म देगा तो मैं उन तीरों को गांव-गांव, घर-घर पहुंचा दूंगा। लेकिन अब ज्यादा देर ना करना भगवान, मुंडा लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं।
1: अजीब आदमी था, क्या नाम बता रहा था? हाँ, धानी मुंडा। मुझे भगवान समझता है, बिरसा भगवान कहता है मैं मुंडाओं को उनकी जमीन वापस दिलवाऊंगा, मगर अंग्रेज हाकिम, पुलिस दारोगा, जमींदार, साहूकार, इन सबके होते भला मैं क्या कर सकता हूँ?
3: लेकिन बूढ़े धानी की बातों ने बिरसा को सोचने पर मजबूर कर दिया। बिरसा ने ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी बहुत निकट से देखा। मुंडाओं में व्याप्त अशिक्षा और अंधविश्वासों से भी उसका परिचय था। उसने जान लिया था कि मुंडाओं के खोए हुए आत्मसम्मान को लौटाने के लिए उन्हें कुरीतियों से मुक्त करके किसी दृढ़ शक्ति के प्रति अटूट विश्वास दिलाना होगा। सब कुछ सोच समझ कर बिरसा ने स्वयं को धरती का आबा यानी पिता बिरसा भगवान घोषित कर दिया।

उसने अपने अनुयायियों यानी वीर साइतों को साफ सुथरा रहने, जनेऊ पहनने, तुलसी की पूजा करने का आदेश दिया। वीर साइत गांव-गांव में जाकर बिरसा भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करने लगे।

सामान्य सफाई और सावधानी बरतकर बिरसा ने हैजा और चेचक जैसे असाध्य रोगों को फैलने से बचा लिया। तब तो उसके भगवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। हजारों मुंडा उसके दर्शन करने, उसके उपदेश सुनने के लिए चालकाद आने लगे।

0: बिरसा ने मुंडाओं के जातीय गौरव को ललकारना शुरू किया। उसके कहने से मुंडाओं ने लगान देना बंद कर दिया, जमींदारों के लिए मुफ्त में काम करना छोड़ दिया। उसकी इन बातों से जमींदार और अंग्रेज हाकिम तिलमिला उठे। उन्होंने बगावत भड़काने के आरोप में बिरसा को 2.5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वो ये भी सिद्ध करना चाहते थे कि बिरसा भगवान नहीं, एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन मुंडाओं पर इसका दूसरा ही असर हुआ। वीर साइतों ने उस आंदोलन को जीवित रखा। कठिन अकाल के दिनों में भूखे रहकर भी उन्होंने न तो लगान दिया न बेगार की। सजा पूरी होने पर जब बिरसा घर लौटा तो झुंड के झुंड मुंडा चालकाद में जमा होने लगे।
1: तुम कहां चले गए थे भगवान? देखो तुम्हारे बिना हमारी कैसी दशा हुई। तुम्हारे कहने से हमने लगान देना बंद किया, बेगार नहीं की तो जमींदार साहूकारों ने हमें अनाज देना बंद कर दिया।
2: लेकिन हम तुम्हारी दी हुई सीख पर अटल रहे भगवान। हमने घाटों, कंदमूल और जंगली जानवरों पर गुजारा किया, पर दिकुओं के आगे सर नहीं झुकाया भगवान।
1: अब तो जंगलों के कंदमूल भी खत्म हो चले हैं, अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे?
3: शांत हो जाओ, शांत। मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारा बिरसा भगवान। मैं धरती का आबा हूं, ये धरती हमारी है। बिकू हमारी धरती पर कब्जा किए बैठे हैं। अंग्रेज हाकिम तो हमें आदमी तक नहीं समझते। हमें अपनी धरती उनसे वापस लेनी है। तुम सब तैयार हो जाओ, अब लड़ाई होगी, उल गुलान होगा।
4: उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान।
0: मुंडाओं की उल गुलान यानी क्रांति की पुकार से सिंहभूम, चाईबासा और रांची के जंगल गूंज उठे। तीर, धनुष, बर्छे, बलुआ जमा किए जाने लगे। घने जंगलों की गुफाओं में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मचान बांधकर छिपकर रहने की व्यवस्था कर ली गई। बिरसा बस्ती बस्ती घूमकर छोटे बड़े स्त्री पुरुष को इस लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था।
3: मुंडा होना कोई शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। हम अपनी धरती के लिए बाहरी लोगों को लगान नहीं देंगे। हम इस धरती के स्वामी हैं, हम इस धरती पर अपना राज बनाएंगे। स्वतंत्र मुंडा राज। उल गुलान, उल गुलान,
0: उल गुलान। सन 1899 का दिसंबर महीना, क्रिसमस की रात, बिरसा ने पूर्ण क्रांति उल गुलान की घोषणा कर दी। बाहरी लोग चुन चुन कर मारे जाने लगे। न जाने कहां से मुंडाओं की टोली आती। हलाए!

जहर बुझे तीरों से अत्याचारियों को मारती, आग लगाती और गायब हो जाती।

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम. और श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं समाप्त होता है. तो अजीत
4: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए दीजिए आज्ञा. नमस्कार.
5: उमंग उमंग उमंग उमंग.
6: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है. तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में. यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
7: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब होटल मॉल स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी, कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसी मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए क्या बात हुई सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे

0: कैसे करेगा? और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
1: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है। हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे, तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं आप?
0: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है, जहां पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है, ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे, तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूं उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
1: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है, और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
0: एक इंसान को व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं, वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं, वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
1: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है। एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पर?
0: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म नहीं, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है, उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है, इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8 FM@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
3: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी। श्रोताओं, जीने के साधन इस धरती ने हमें कई रूपों में दिए और ये सभी साधन हमारे शरीर को या कहें पूरे जीवन को ऊर्जा देने का काम करते हैं। ऊर्जा यानी वो शक्ति जो हमें कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। पर ये ऊर्जा कहाँ से आती है? कौन है जो निरंतर इस धरती के जीवन को बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा से शराबोर रखता है? आइए सुने सूरज सभी ऊर्जाओं का स्रोत।

0: क्या किया मैंने?
1: सब कुछ खराब कर दिया। तू बस रुक, मैं अभी देखती हूँ तुझे।
0: विवेक भैया जल्दी आओ इधर प्लीज।
2: अरे क्या हुआ मानव, क्यों चिल्ला रहे हो?
0: देखो ना भैया, दीदी हमेशा मुझे डांटती रहती है और आज भी डांट रही है।
2: अरे तुम लोग शांति से नहीं बैठ सकते, तुम लोगों की वजह से मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। अब तुम लोग लड़ो मत यार।
1: देखो ना भैया, इसने मेरी पेंटिंग पर पानी गिरा दिया है। मैंने बहुत मेहनत से ये पेंटिंग बनाई थी।
0: बनाई थी पेंटिंग,
1: ये बाहर जाकर नहीं खेल सकता।
2: मानव बहुत गलत बात है।
0: क्या भैया?
2: अब इन दोनों को बाहर भी नहीं बेच सकता, बाहर इतनी धूप है, बीमार पड़ जाएंगे। और फिर मम्मी पापा ने बाहर जाने से मना किया है। ऐसा करो मानव, तुम इससे दूर जाकर अपनी वाटर गन से खेलो, जाओ।
0: ठीक है।
3: दीदी दीदी मुझे पानी दे दो ना।
1: तुम फिर मुझे परेशान करने लगे, अभी तो तुमने पानी पिया था। जाओ फ्रिज से खुद पानी ले लो, मुझे पेंटिंग बनाने दो।
0: अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ।
1: अरे ये क्या किया, पानी गिरा दिया, गिलास से पानी भी नहीं पी सकता। तो ऐसे नहीं मानेगा, इधर आ।
0: भैया भैया देखो ना, देखो दीदी मुझे मार नहीं आ रही है। भैया
2: तुम लोग थोड़ी देर तक आराम से नहीं बैठ सकते, अब क्या हुआ?
1: देखो ना भैया, इसने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया।
2: अरे तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करते हो? चलो मानव तुम मेरे साथ आओ, मेरे कमरे में चलो, और सृष्टि तुम यहाँ बैठ कर अपना काम करो। चलो चलो।
0: ठीक है।
4: x square plus y square is equal to z
0: भैया भैया
4: हाँ
0: भैया, आप कह रहे थे ना कि चिल्लाने से ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, लेकिन हमें ये ऊर्जा आती कहाँ से है?
2: मानव हमें ऊर्जा खाने से मिलती है, और यही ऊर्जा हमारे काम करने की क्षमता होती है। ठीक है
0: तो भैया इसमें चिंता की क्या बात है, मैं फिर से खाना खा लूंगा जिससे मुझमें फिर से ऊर्जा आ जाएगी।
2: मानव तो तुम फिर से सृष्टि को तंग करना शुरू कर दोगे, तुम नहीं सुधरने वाले। सोचो अगर तुम्हारी तरह सभी लोग इस तरह ऊर्जा बेकार करने लगे तो खाने की तो कमी हो जाएगी।
0: खाने की कमी? भैया क्या बात कर रहे हो, अभी यहाँ तो पूरी रसोई खाने की चीजों से भरी हुई है। अच्छा भैया ये बताओ कि खाने में एनर्जी कहाँ से आती है?
2: मानव तू नहीं मानेगा, सवाल पे सवाल किया जाएगा। ऐसा ऐसा करो चुपचाप खेलो तुम, मुझे कुछ काम करना है भाई, काम करने तो चुपचाप।
0: अच्छा ठीक है। भैया ये बताओ ना कि खाने में ऊर्जा कहाँ से आती है?
2: मानव सुनो, हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है? सब्जी, फल, दाल, चावल आदि। इसको खाकर हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि मिलते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा आती है, और ये सब पेड़ पौधों से मिलता है। इस सभी में ऊर्जा सूर्य से आती है, समझे? अब काम करने दो मुझे।
0: भैया भैया आपकी दीवार पर चिपका ली।
2: मानव तो क्या हुआ भाई, चुपचाप काम नहीं करने दे सकते मुझे?
0: अच्छा भैया ये बताओ कि इस छिपकली में ऊर्जा कहाँ से आती है?
2: अरे मानव ये भी तो हमारी तुम्हारी तरह एक जंतु है, ये शाकाहारी ना होकर मांसाहारी है, और कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरती है, जिससे उसे सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, समझे?
0: भैया देखो छिपकली तो गई, पर बड़ी छिपकली आ गई, सृष्टि दीदी। अब इसको यहाँ से भगा दो बस।
2: मानव दीदी से ऐसे बात करते हैं? अब तू डांट खाएगा और मार भी, ऐसे बात करते अपनी दीदी से? सृष्टि तुम्हारी पेंटिंग पूरी हो गई?
1: अभी कलर किया है, सूखने के लिए रखी है।
2: अच्छा
1: मैं इस मानव की बातें सुन रही थी इसलिए यहाँ आ गई।
0: अच्छा
2: अरे बातें करना तो इसकी आदत है, बस एक ही सवाल के पीछे पड़ गया है कि जीव जंतुओं और पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है। अच्छा सृष्टि तुम ही बताओ कि जीव जंतु और पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है?
1: हाँ मैंने अपनी किताब में इसके बारे में पढ़ा तो है। हर प्राणी अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, इस प्रकार शाकाहारी जीव पेड़ पौधों पर और मांसाहारी जीव दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं, है ना?
0: ओहो दीदी मैं और भैया इतनी जरूरी बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ गई तुम।
1: क्या कहा तुमने?
0: नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ तो भैया आप बताओ ना कि पेड़ पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है?
2: मानव तुम शोर मचाकर हमेशा अपनी ऊर्जा खर्च करते रहते हो, सृष्टि इसी के बारे में तो बता रही थी पर तुम सुनने को राजी नहीं हो। चलो मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ।
1: ठीक है।
2: पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, पौधे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करके ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं और ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानी जाती है, समझे?
1: इस क्रिया में क्या होता है भैया?
2: अच्छा एक काम करते हैं, बताने से पहले तुम दोनों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखोगे? चलो चलो चलो, पहले बालकोनी में चलते हैं, चलो एक चीज, बहुत बढ़िया चीज।
1: अरे भैया यहाँ तो बहुत धूप है।
0: अरे भैया आपको दिखाने वाले थे ना, दिखाओ ना।
2: देखो ना ये पौधा देख रहे हो?
1: हाँ?
2: ये पौधा सूर्य की रोशनी में रखा है, पापा इसे रोज पानी देते हैं इसीलिए ये हरा है। ये पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, पानी, हवा, मिट्टी की सहायता से बनाता है। वो सीढ़ियों पर रखा हुआ पौधा देख रहे हो, वो वाला?
1: हाँ भैया।
2: वो जो सूख गया है?
1: हाँ, हाँ।
2: वहां पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है और क्योंकि उसे किसी ने पानी नहीं दिया इसलिए भोजन ना बनने से ये पौधा सूख गया है।
0: बेचारे पौधे की रसोई में सूरज की गैस ही नहीं जली तो वह खाना कैसे बना पाता।
2: मानना, बहुत जल्दी सीख जाते हो तुम।
1: भैया अगर इस तरह सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो हम सभी जीवों को भोजन की कमी होने से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है। अब मैं समझी, हमें ऊर्जा भी सूरज के कारण ही मिलती है।
2: वाह सृष्टि, वाह, पापा सही कहते हैं भाई। अब तो मैं भी कह सकता हूँ कि लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर, क्यों? हमारी ऊर्जा ही नहीं सृष्टि बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं की ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही तो है। अगर ये सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ही ना होता।
0: पर भैया एक बात समझ में नहीं आई।
2: वो क्या?
0: आप ये बताओ कि मेरा खिलौना कैसे कार्य कर रहा है, इसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है और इसमें भी सूर्य की कोई भूमिका है?
2: मानव है भी और नहीं भी।
0: वो कैसे?
2: देखो मानव, तुम्हारा ये खिलौना बैटरी से चलता है, है ना? और बैटरी को तुम किससे चार्ज करते हो?
0: बिजली से।
1: और ये बिजली कहाँ से आती है?
0: बिजली घर से।
2: बिजली घर से तो हमारे घर तक आती है। बिजली बनती है कोयले, पानी की शक्ति, प्राकृतिक गैस या बायोमास इत्यादि से, समझे?
1: और इन सब में सूर्य की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भूमिका है।
0: पर भैया पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला बनाने में सूर्य की क्या भूमिका है?
1: हाँ ये सभी फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन है।
2: कोयला और पेट्रोलियम आदि मरे हुए पौधों और समुद्री जीव जंतुओं से बने जो करोड़ों वर्ष पहले जमीन में दब गए थे।
1: और इतना तो तुम्हें पता ही है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी का ऊर्जा स्रोत सूर्य ही है।
0: हाँ अब कुछ कुछ बात समझ में आई है।
2: वाह मानव, आई गई बात समझ में। अच्छा जरा देखो दूसरे कमरों की लाइट तो बंद है, देखे आओ जाओ।
0: भैया दीदी से कह दो ना, वो देख लेगी।
2: मानव शशि तुम ही देख लो जरा।
1: हाँ भैया मैं जाती हूँ।
5: देखो तो बाथरूम और स्टोर की लाइट खुली है।
0: पर भैया यहाँ तो अंधेरा रहता है, इन्हें तो जलने दो।
2: नहीं मानव, अगर जरूरत नहीं हो तो इसे बंद कर दो। हमें ऊर्जा को बचाने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें एक बात और बताऊं मानव, हमारे ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी जरूरत इन पर भी बढ़ती जा रही है।
0: लेकिन भैया सूर्य तो है ना, पेट्रोलियम और कोयले के भंडार भी बढ़ते रहेंगे।
2: अरे ऐसा नहीं है मानव, नहीं है ऐसा। कोयले और पेट्रोलियम के भंडार कम होते जा रहे हैं और वैसे भी इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं।
0: पर भैया हमारी लाइट बंद करने से कितनी ऊर्जा बचेगी?
2: मानव यदि हमारी तरह प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को बचाने की बात सोचे तो छोटी छोटी बचत से हम ऊर्जा के भंडारों को और अधिक दिनों तक चला सकते हैं।
1: कुछ समझ में आया मानव?
0: कुछ कुछ तो आया है। चलो छोड़ो दीदी, हम दोनों ना टीवी देखते हैं।
2: चलो चलो जाओ तुम लोग टीवी देखो।
1: तुम टीवी चालू करो, मैं आती हूँ।
0: दीदी, अरे दीदी कहाँ रह गए तुम, जल्दी आओ, देखो मेरा मनपसंद कार्टून आ रहा है।
1: अरे आ रही हूँ ना। मानव कार्टून बहुत देख लिया, जरा दूसरा चैनल लगाओ।
0: नहीं मुझे कार्टून ही देखना है।
1: तुम हमेशा यही देखते हो मानव, मुझे रिमोट देता है या नहीं?
0: नहीं मैं नहीं दूंगा।
1: मुझे दे।
0: नहीं दूंगा, जाओ, मैं तुम्हें नहीं देता रिमोट। और हाँ मुझसे लड़कर ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो।
1: ठीक है मैं जा रही हूँ, अकेले टीवी देखती हूँ।
0: हाँ

0: सृष्टि सृष्टि देख रहे तो दरवाजे पर कौन है?
1: अभी देखती हूँ।
0: कौन है सृष्टि?
1: अब पोस्टमैन अंकल है।
2: बेटा सूर्य प्रकाश जी का पत्र है, क्या वो घर पे हैं? उनके इस कागज पर हस्ताक्षर चाहिए।
1: अच्छा अंकल एक मिनट। विवेक भैया।
0: हाँ।
1: पापा का पत्र है, इधर आना।
0: अच्छा नमस्ते अंकल।
2: नमस्ते बेटा।
0: कहाँ पर साइन करना है?
2: यहाँ पर करते हैं। ठीक है बेटा।
1: अच्छा अंकल, जब घंटी बजी थी तो आवाज निकली थी, ये भी तो विद्युत से जुड़ी है ना, तो विद्युत ऊर्जा का नुकसान नहीं हो रहा इस घंटे को बजाकर?
0: अरे मानव, अभी तक तुम्हारे दिमाग में ऊर्जा के ही सवाल चल रहे हैं क्यों? देखो घंटी का स्विच दबाने पर ही आवाज निकलती है, मतलब ये है कि जब जरूरत है तभी बज रही है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है।
1: तो जलते हुए बल्ब से कौन सी ऊर्जा निकल रही है?
0: बल्ब से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा में बदलती है। अच्छा मानव, क्या तुम्हें मालूम है कि विद्युत ऊर्जा के हमारे घर तक आते आते ही 30% ऊर्जा का नुकसान हो जाता है?
1: वो कैसे?
0: वो ताप में बदल जाती है।
1: तो इसके हिसाब से एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल जाती है और ऊर्जा का क्षय नहीं होता।
0: बिल्कुल, यही तो वैज्ञानिक रूप से सत्य है।
1: कौन है?
3: हेलो बेटा, कैसे हो?
1: अरे पापा मम्मी।
3: हाँ बेटा, जल्दी से पानी पिला दे।
1: हाँ।
4: कितनी गर्मी थी
3: बाहर। हाँ हाँ हाँ भाई।
1: ये लो पापा पानी।
3: थैंक यू।
1: ये लो मम्मी।
4: ठंडा है बेटा?
1: हाँ जी।
3: हाँ आज बहुत गर्मी है, सूर्य गर्मी उगल रहा है भाई। अब सृष्टि और दिन भर आज क्या किया?
1: पापा मैंने एक पेंटिंग बनाई है, अभी लाती हूँ।
3: हाँ जरूर जरूर, जल्दी लेके आओ।
1: पापा ये देखो कैसी है।
3: हाँ अरे वाह, ये तुमने बनाई?
1: हाँ पापा।
3: अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब बाय द वे ये मानव और विवेक कहाँ है भाई?
1: विवेक भैया अपना होमवर्क कर रहे हैं और मानव उन्हें तंग कर रहा है।
3: As usual।
1: लो ये भी आ गया। पापा सीढ़ियों पर रखे उस गमले को आप बालकनी में क्यों नहीं रखते? बेचारा सूख गया है।
3: अरे बेटा मैंने बहुत दिनों से उसे देखा नहीं है ना, वो सीढ़ियों पर ना चढ़ने के कारण मैं उसे पानी देना भूल जाता हूँ, घुटनों में दर्द होता है ना।
1: लेकिन पापा इसके अलावा वहाँ सूर्य की रोशनी भी तो बिल्कुल नहीं पहुँचती ना।
3: हाँ देख नहीं रहे हो, इसी सूर्य से तो परेशान हूँ, बाहर आग उगल रहा है, दिन में जाना कितना मुश्किल है। पता नहीं कब तक आग बरसाएगा ये।
1: पापा आपको

0: अगर सूर्य नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे।
1: अरे वाह वाह वाह मानव, तुम तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। ये सब तुम्हें किसने बताया भाई?
0: आज विवेक भैया ने मुझे ऊर्जा के बारे में बताया था।
1: अच्छा, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड।
0: लेकिन पापा, ये सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है?
1: ये विवेक ने नहीं बताया? देखो बेटा, मैं अभी बहुत थक गया हूँ। वो आज शाम को हमारे यहाँ साइंस क्लब वाले शर्मा अंकल आ रहे हैं।
0: अच्छा,
1: शाम को उनसे पूछ लेना।
0: फिर तो ठीक है, मैं भी खेलने जाता हूँ। ठीक है,
2: ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना।
0: हाँ, आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा।
1: वसुधा भाई, मानव तो अच्छे अच्छे सवाल पूछने लगा है।
2: विवेक और सृष्टि के साथ रहकर होशियार हो गया है अपना मानव, और खुद भी कुछ न कुछ सोचता रहता है।
1: हाँ, मुझे खुशी है कि हमारे तीनों बच्चे मेरे जैसे समझदार हो गए।
2: हमारे जैसे।
1: अच्छा, ओके ओके।
3: पापा पापा, कैसा रहा भाई? बाहर बहुत गर्मी है ना?
1: बहुत गर्मी है रे, पागल हो गए।
3: पापा, आपकी ये चिट्ठी आई थी।
1: हो, हो, हो, हो, इस पत्र का इंतजार तो मैं 2 दिनों से कर रहा था।
2: अच्छा। अरे, इस समय कौन आ गया? आप देखिए ना, मैं बहुत थक गई हूँ, कहीं काम वाली ना हो।
1: मैं देखता हूँ। अरे शर्मा जी आए हैं।
4: नमस्कार सूर्य प्रकाश।
1: नमस्कार, नमस्कार, आइए आइए आइए शर्मा।
2: नमस्कार भाई साहब।
4: नमस्कार भाभी जी। ये सब बच्चे कहाँ हैं?
0: हम यहाँ पर हैं।
4: अरे
1: अभी खेल कर आए हैं।
4: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: बैठिए ना
4: जी। शुक्रिया। हाँ तो बच्चों, बताओ आज आप लोगों ने दिन भर में क्या किया खेलने के अलावा?
0: अंकल, मुझे भैया और दीदी ने ऊर्जा के बारे में बताया।
4: अच्छा, तो तुमने ऊर्जा के बारे में क्या जाना?
0: यही कि सारी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है।
4: वेरी गुड। अच्छा, तुमने ये सोचा कि सूर्य में ये ऊर्जा कहाँ से आती है?
0: लेकिन भैया ने ये तो बताया ही नहीं।
4: अच्छा विवेक, तुम बताओ।
3: सूर्य का मुख्य ईंधन हाइड्रोजन है, और इसके तापमान के कारण इसमें चलने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया यानी न्यूक्लियर फिजन है।
4: गुड, वेरी गुड। अच्छा सृष्टि, तुमको मालूम है कि नाभिकीय संलयन क्या है?
5: नहीं अंकल।
4: ठीक है, मैं बताता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। देखो, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम एवं कुछ अन्य पदार्थ मुख्यतः पाए जाते हैं। सूर्य के केंद्र का ताप लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है।
0: इतना ज्यादा?
4: हाँ, इतने अधिक ताप के कारण सूर्य के अंदर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलकर आपस में टकराते हैं, और हाइड्रोजन के 4 नाभिक आपस में मिलकर एक हीलियम बना लेते हैं। हाँ, और इस प्रक्रिया में 5 मिलियन टन ऊर्जा निकलती है। 5 मिलियन टन। अधिक दबाव और तापमान के कारण नाभिकों का आपस में मिलना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है।
0: ये क्रिया रोज होती है?
4: ये अभिक्रिया हमेशा चलती रहती है सृष्टि, और 1 सेकंड में लगभग 42,00,000 टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है।
3: पर अंकल, ये क्रिया कब से चल रही है?
4: ये करीब 5 अरब सालों से चल रही है विवेक, तभी से सूर्य प्रकाश देता आ रहा है, और जानते हो अगले 10 अरब सालों तक और चमकेगा।
0: और उसके बाद क्या होगा?
4: देखो मानव, जब ऊर्जा का स्रोत नहीं रहेगा तो इसके अभाव में सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। हाँ, सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन का भंडार हर पल कम होता जा रहा है।
3: अच्छा।
4: और जब ये भंडार समाप्त हो जाएगा तब सूर्य आज की तरह ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कर सकेगा।
0: तो क्या उस समय सूर्य नहीं रहेगा?
4: देखो मानव, हाइड्रोजन की आपूर्ति समाप्त होने पर वो फूलने लगेगा, और उसका आकार इतना अधिक हो जाएगा कि वो पृथ्वी को निगल लेगा।
3: अच्छा।
4: और कुछ समय के पश्चात वो चमकना बंद कर श्वेत तारा बन जाएगा।
0: लेकिन अंकल, सूर्य अभी भी तो एक तारा ही है ना?
3: हाँ, वो तो अभी भी वो तारा ही है, लेकिन अभी सूर्य काफी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। श्वेत तारा बनने के बाद वो ऐसा नहीं करेगा।
0: अगर सूर्य तारा है तो बाकी तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते?
4: मानव, ऐसा है कि तारे तो हमेशा आकाश में रहते हैं, लेकिन सूर्य के अधिक प्रकाश के कारण वो हमको दिखाई नहीं देते।
0: अच्छा।
4: अच्छा सूर्य प्रकाश जी, अब चलता हूं।
0: बाय अंकल।
2: चलो बच्चों, खाने के टेबल पर आओ।
0: अभी आ जाओ। चलो चलो चलो। वैसे मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है?
2: जब टेबल पर आओगे तो पता चल जाएगा। आओ फटाफट।
0: चलो चलो चलो, बहुत जोर से भूख लगी है। चलो चलो।
2: ये रोटी लो सृष्टि।
0: वाह मम्मी, क्या खाना बनाते हो आप।
2: दाल खत्म करो जल्दी।
0: दाल,
1: अरे खाओ ना मानव।

0: ए मानव, अरे उठो, घूमने नहीं चलना है
1: क्या? पापा सोने दो ना।
0: तुम तो कह रहे थे कि घूमने जाऊंगा।
1: अरे आधे घंटे बाद चलेंगे ना।
0: आधे घंटे नहीं रुकूंगा मैं, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं तो अभी जा रहा हूँ। हाँ
1: अच्छा ठीक है, मैं अभी उठता हूँ।
0: हाँ जल्दी करो, वरना मैं और सृष्टि जा रहे हैं।
1: नहीं नहीं रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ अभी।
0: सृष्टि जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो।
1: सृष्टि दीदी जरा मेरी फुटबॉल भी ले आना, ठीक है?
0: अरे ले लेना सृष्टि।
1: अच्छा अच्छा, अब चलो ना जल्दी।
0: आओ चलो। भाई सुबह का मौसम बहुत सुहाना है ना बच्चों?
2: हाँ सच में पापा, गनीमत है कि हमारे पास में ही ये सुंदर और बड़ा पार्क है।
0: हाँ भाई, पार्क तो हम लोगों के लिए वरदान है, वरना हम लोग शुद्ध हवा लेने कहाँ जाते?
1: बिल्कुल।
3: पापा मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ?
0: खेलने आ जाओ, मगर देखो किसी से लड़ना नहीं है।
2: अच्छा ठीक है। हाँ। पापा थोड़ी देर वहाँ बेंच पर बैठते हैं, तब तक मानव अपना खेल खत्म कर लेगा।
0: हाँ गुड आइडिया, चलो। फूल कितने अच्छे लग रहे हैं,
2: बहुत सुंदर है ना।
0: गुलाब देखो ना कितना प्यारा। अरे ये मानव अभी तक नहीं आया, पता नहीं खेल रहा है कि लड़ रहा है। और ये देखो सूरज महाराज भी निकल आए
2: और निकलते ही अपना कमाल दिखाने लगे।
3: हाँ। अरे दीदी कमाल देखना था तो हमारा फुटबॉल का खेल देखती।
2: मानव दूसरा कमाल देखना है तो वो देख, लाल लाल आग का गोला देख।
3: वो क्या?
2: वो
0: अरे वो देखना, वो सूर्य है देख। हाँ। कितना बड़ा, कितना लाल, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका रंग भी बदलता जाएगा।
2: पापा हमें सूर्य के अंदर का भाग क्यों नहीं दिखाई देता?
0: अब सृष्टि, आँखों से सिर्फ सूर्य का प्रकाश मंडल दिखाई देता है, अरे उसके अंदर केंद्र का तापक्रम बहुत अधिक है, इसलिए हम केंद्र को नहीं देख सकते हैं।
2: पापा सूर्य की सतह का तापक्रम कितना अधिक है?
0: बेटा उसके केंद्र में नाभिकीय प्रक्रिया के फलस्वरूप केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है।
3: इतना ज्यादा?
0: हाँ, और जो केंद्र से सतह की ओर आते आते करीब 6000 डिग्री सेल्सियस रह जाता है।
3: लेकिन पापा सूर्य के अंदर और क्या क्या है?
2: कल अंकल ने बताया तो था, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक मात्रा में है। इनके अलावा यहाँ बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन और दूसरी गैसेस भी उपस्थित हैं।
3: पापा क्या सूर्य भी पृथ्वी की तरह घूमता है?
0: हाँ सूर्य भी अपनी धुरी पर पृथ्वी की तरह चक्कर लगाता है, और एक चक्कर लगाने में औसतन 27 दिन का समय लगता है।
3: अच्छा।
0: हाँ लेकिन ये स्थिर नहीं है, ये घूर्णन अवधि विषुवत रेखा पर तो 25 दिन और ध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़कर 31 दिन हो जाती है।
2: ऐसा क्यों पापा?
0: बेटा ऐसा उसकी संरचना के कारण होता है। अब देखो तापक्रम अधिक होने के कारण सूर्य पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल अवस्था में नहीं है, सब कुछ गैस अवस्था में है, इसलिए सूर्य के विभिन्न भाग अलग अलग रफ्तार से घूमते हैं।
2: तो सूर्य गैस का गोला है। पर पापा सूर्य बड़ा है या हमारी पृथ्वी?
0: बेटी सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,33,000 गुना अधिक है। सूर्य इतना बड़ा है कि इसको ढकने के लिए हमारी पृथ्वी जैसी 109 और पृथ्वियों की आवश्यकता होगी। खैर चलो अब घर चलते हैं।
2: हाँ, चलो चलो मानव जल्दी घर चलो।
3: हाँ मैं अपना सामान ले लूँ, एक मिनट।
0: हाँ चलो चलो, मैं फुटबॉल ले ले भाई।

0: देखता हूँ मम्मी। अरे आप लोग घूम भी आए?
1: हाँ।
0: सृष्टि कौन से पार्क में गए थे तुम लोग?
1: अरे अपनी कॉलोनी में जो बड़ा पार्क है वहीं।
0: अच्छा भाई बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने।
1: मानव फुटबॉल खेल रहा था और मैं पापा के साथ घूम रही थी। पता है आज मैंने दिन में तारा देखा।
0: हट, मुझे पागल बना दिया क्या?
1: अरे सच में सूर्य तारा ही तो है।
0: अच्छा तो तुम सूर्य की बात कर रहे थे।
2: चकमा ले लिया तुमने।
3: चलो चलो बाकी हंसी की बात है, खाने की टेबल पर करना। नाश्ता तैयार है?
2: नाश्ता तैयार है। चलो
1: चलो चलो।
2: मुझे भी बहुत भूख लगी भाई। नाश्ते का मजा आ रहा है।

0: है
1: बिल्कुल।
2: एक बात है, तुम्हारी मम्मी नाश्ता बनाती बहुत अच्छा है।
3: थैंक यू।
1: बिल्कुल गलत पापा, अगर आपको बढ़ाई करनी है तो सूर्य की करनी थी, जिसकी वजह से हमें ये नाश्ता मिला है।
3: तो फिर मैंने बेकार में मेहनत करके इतनी ऊर्जा बर्बाद की सुबह से।
1: अरे नहीं मम्मी, आपको भी तो ऊर्जा उसी सूरज से मिलती है ना, आप उसकी आराधना करो और वो आपको और ऊर्जा देगा।
3: ये तो फिर से शुरू हो गया।
2: लेकिन वसुधा, कहे तो ये बिल्कुल सही रहा है। हाँ। नाश्ते के लिए मुझे तुम्हारा नहीं बल्कि सूर्य का धन्यवाद करना चाहिए।
3: बिल्कुल करना चाहिए, और कल से उन्हीं से नाश्ता मांगना भी चाहिए।
2: अरे तो गड़बड़ हो गया भाई।
3: वहीं से मांग लीजिएगा नाश्ता।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जाँच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 times 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो।

लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: 5 साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
1: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
0: तो नहीं है आपके आहार में दम,
1: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
0: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा?

0: है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग

यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: घर में।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान, कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: mixing in the house.
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
5: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

0: दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
1: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा, छलावा थी।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
2: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
3: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
3: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
2: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
3: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
2: जी।
3: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
2: और
3: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैरी में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
2: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
3: उसमें आराम करें,
2: उसमें आराम
3: वहाँ भी जगह मिल जाए, लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का भी जगह है उनको वहाँ पर अपना।
2: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
3: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
2: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
3: हीट स्ट्रोक हो जाता है, बुखार आ जाता है,
2: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
3: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं और धूप में गर्मी में है, तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
2: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
3: लूज मोशन भी है,
2: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
3: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोसी के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
3: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज है ये ORS?
3: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
2: जी,
3: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है ये, किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आपको देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पे, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
2: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
3: तब भी उसको ले सकते हैं,
2: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहे, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
3: दिनचर्या तो यही कि सुबह जल्दी उठे
2: जी,
3: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
2: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
3: गर्मी से बचें थोड़ा सा जितना भी हो सकता है, जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
2: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Bingo on Malaysia got the end. दिमागी बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: अक्षरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: गगन खोखरी फतेह।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है. हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली. आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM. हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा. स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो. अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें.
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
1: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
3: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
3: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
3: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से भिशुम भिशुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
2: क्या कहा तुमने?
3: Kids want to know, मिस मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
3: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।